सो दोस्तों एसीजी साडा अज दा प्रोग्राम ते प्रोग्राम दे विच थोड़ी जी डिस्टर्बेंस हो रही है टेलीफोन दा कनेक्शन करके उदे वास्ते एक बारी फिर दोबारा सॉरी ते देशां विदेशां सुन रहे दोस्तों आप सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हास्से खिलारदा।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं दीआं कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां,

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खत पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे वाली है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधु दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीत दे नाल इस चालू करांगे जी

कि अब दोनों बेकरार हो जाएं, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

गुरु सवारे सत्कार्य गुरु खालसा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नामदेव गुरु सिख संगत वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमलां ते कौतकां राहीं पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साला साजना दिवस की स्वयमान परी याद नूं सदी वी बनाउण लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती नूं 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद विच चक माता नानकी का नाम दिता। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र दे गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर पर आए कश्मीरी पंडितों की बेनती से समुची मानवता विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार समाजिक आजादी बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया। इस पिछों तो लासानी रूहानी कौतकों की झड़ी ही लग गई। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखा अणगैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करने उपरंत गुरु दर तो आनंद प्राप्ति की रीझ रखने वाल ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा 10वें पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। ओह पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमई जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावल राही सीस भेट करने वाले 5 गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आं, आप उन्हां अगे सीस निवाउंदे आं, आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालियां नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदे होया इह वचन उचारे, इन्हीं की कृपा के सजी हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। इसे गुरु खालसा पंथ के बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दे कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे वी रिस्पेक्ट यू एंड योर व्यूअर्स.

से छुप छुप के रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: आजा पिया तोहे प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो प्यार दूं।
1: वाह वाह राधा जी, आज मदर डेरी है तुहानू पता है
0: जी।
1: हां जी,
0: हां जी, बिल्कुल पता है।
1: दुनिया दी सोहणियां मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे
0: जी? बिल्कुल, एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी, हां जी
0: हां जी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा,
0: यूपी च मंजली या

निखेत जुलन ने आप दे दिलां ते राज करन वाला ये है जी परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट।

ऑफकोर्स प्रभाग रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर गॉड यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड लवली फनी वर्ल्ड विद योर ओन वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस We are only born colors. That's the beauty.

0: शीशम की दीवार जहाँ थी मुझे कर गया चित्र सिंह सरदार अगर हाथी पा गया
1: ना।

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, ओदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जी जी कल लाऊंगा।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाउंदे हन रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301।

अत्यंत सुभाग्य दिन है जिस दिन अमृत दिदाते सर्वंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमला ते कौतकां राही पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साल साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदी भी बनाने लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती में नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद में चक माता नानकी का नाम दिता है। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र के गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर पर आए कश्मीरी पंडितों की बेनती से समुची मानता ते विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार अते समाजिक आजादी बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों नौवें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही केवल सीस ही लिया गया से। इस पिछों तो लासानी रूहानी कौतकों की चढ़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखा नूं अणगैरत वाली आनंदमई जिंदगी लई अपना सीस कुरबान करने उपरंत गुरु दर तो आनंद प्राप्ति की रीझ रखने वालिया ने गुरु नूं सीस भेट करन दा अमुक प्रवाह चला दिता। शायद इसे लई इस धरती दा दसम पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता। वो पुरी जिथे आके कोई भी अपने सतगुरु दे सन्मुख हो के गुरु दी मत विच जीउंदे आ गुरु दे तप तेज दा तारनी बन के खालसे दे रूप विच आनंदमय जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सन 1699 दी विसाखी ते खंडे बाटे दी पावर राही सीस भेट करन वाले पंज गुरसिखां नूं अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आ आप उन्हां दी सीस निभाउंदे आ आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां दी गिणती विच अपने दर ते आउण वालिआं नूं गुरु खालसा पंथ दा नाम दे के निवाजदे होइआं यह वचन उचारे इन्हीं की कृपा की सजी हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। इसे गुरु खालसा पंथ के बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दे कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर

के पग घुंघरू पग घुंघरू बांट मेरा नाची थी पग घुंघरू बांट मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी के

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होन लिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पग दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप सोच ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: करें और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।